حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سمع

وضرب لنا

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

आसमान और जमीन के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ, और जोर के सिवा तो तुम निकल सकने ही के नहीं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ दिया जाएगा तो फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फट कर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

0: और जो शख्स अपने परवरदिगार के सामने खड़े होने से डरा उसके लिए दो बाग हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें दो चश्मे बह रहे हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उनमें सब मेवे दो दो किस्म के हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?
1: متكئين على فرش بطائنها من استبرق

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 7 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार है, ज़िलहज की 28 और जून की 14 तारीख। ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मसाइल के हल के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ़ को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीरे ख़ज़ाना ने कहा है कि मुख्तलिफ़ हलकों की जानिब से वफ़ाक़ी बजट पर मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार हुकूमती पॉलिसियों पर बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। बहरी मूर के वज़ीर ने कहा है कि जहाज़रानी की सनत के लिए सेल्स टैक्स की छूट से बहरी खिदमात के शोबे में सरमायाकारी की हौसला अफजाई होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वकला बरादरी ने कलदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज को मुस्तरद कर दिया है। ख्वातीन की आईसीसी T20 आलमी कप में आज बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पार्लियामेंट में अपोजिशन रहनुमाओं को मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा है कि जम्हूरी अकदार को मजबूत बनाने के लिए इख्तलाफात को बातचीत के जरिए हल करना जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने माजी में मुतअद्दिद मरतबा जम्हूरियत और मईशत के चार्टर की पेशकश की थी, ताहम उनकी मुखलिसाना कोशिशों को कबूल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि ऐवान के अरकान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों की नुमाइंदगी करते हैं और यह मौजूदा ऐवान एक घर की मानिंद है जिसमें चारों सूबों के लोग शामिल हैं। अपोजिशन लीडर के रिमार्क्स का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सूबों के अवाम को अपने अपने वसाइल पर पूरा हक हासिल है और इस हवाले से कोई तनाज़ा मौजूद नहीं है। वज़ीर-ए-खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वफाकी बजट 2026-27 मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लामाबाद में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिसमें वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी भी मौजूद थे कि हमरा पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बजट पर मुस्बत रद्द अमल हुकूमत पर बढ़ते हुए एतमाद की अलामत है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने कहा कि दस्तयाब माली गुंजाइश को तरक्की के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की गई है। वज़ीर ख़जाना के मुताबिक बजट में बरामदात पर मबनी तरक्की के लिए साजगार माहौल फराहम करने के इकदाम शामिल हैं जिनमें सुपर टैक्स और एडवांस टैक्स से मुतालिक फैसले भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम को तौसी दी गई है ताकि बरामद कुनंदगान को 4.5% शर सूद पर माली सहूलत दस्तयाब रहे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि हुकूमत दरमियानी अशर खाम माल की लागत कम करने के लिए पुरअज़्म है ताकि

0: We'll be back after this short commercial break.
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकनीक यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अजदवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अजदवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।
2: 101 FM।
3: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन। हमसे है।

ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: AM Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. Sunday 28th of Zilhad, June the 14th, 2026. This is Radio Pakistan. The news read by Daman Zaman. The headlines. The Prime Minister says Pakistan is preparing for electronic signing of a peace deal between Iran and the United States of America. The Finance Minister says positive response to the federal budget from various quarters reflects the growing confidence in the government's policies. The Minister for Maritime Affairs says the withdrawal of sales tax from shipping industry will encourage investment in the maritime sector. The legal fraternity of Azad Jammu and Kashmir has rejected violent protests by proscribed Joint Awami Action Committee. The World Blood Donors Day is being observed today.
2: One FM.
3: Hey, we'll be back after this short commercial break.
4: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली वो अभी अपना ذاتی मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें याद रखें बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है कतार ना इंतजार खवातीन होंगी बाइख्तियार बेनजीर का बेनजीर ख्वाब हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार
5: दिस इज FM 101
6: कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोधा लारकाना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101
7: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान

0: be back after this short commercial break.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: You are listening FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
3: Entertainment ho ya updates, ye hai tumhari har mood ka dost.

0: listening. FM 101 Radio Pakistan. FM 101. Tune in to the one above.
1: Toot jaate hain dil ishq ke darbaron mein. Laut jaate hain aashiq barf ke angaron mein. Suna hai dhoondne se khuda bhi mil jata hai. शायद हम भी मिल जाएं तुम्हें एक दिन टूटे हुए सितारों में.

0: 101 Time Check. It's 8:30 AM.
1: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम, सदर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकॉनमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए। तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली, वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें। याद रखें, बेनजीर मोबाइल से मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है। कतार ना इंतजार, खवातीन होंगी बाइख्तियार। बेनजीर का बेनजीर ख्वाब, हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार।
2: दिस इज FM 101.1।
0: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: 오케이
1: 오케이.
2: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान। निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है, जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
3: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
2: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
2: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बाकायदा एतराफ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त आपकी पहचान।
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: This sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: चलो यार।
1: हेलो।
0: हेलो। ओके आई एम सॉरी।
1: इट्स फाइन। आई थिंक बारिश होने वाली है।

0: दिन की असल ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब की तैयारी कर रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुख्तलिफ हलकों की जानिब से विफाकी बजट पर मुस्बत रद्द अमल का इजहार हुकूमती पॉलिसियों पर बढ़ते हुए एतमाद का मज़हर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर की वकला बरादरी ने कालेदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज को मुस्तरद कर दिया है।
1: We'll be back after

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM।
5: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, the अल्टीमेट पावर solution।
6: हमसे है रोशन ये जहां,
7: हमसे है

कभी मैं कभी तुम देखिए लास्ट मेगा एपिसोड आज रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर और पाकिस्तान के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।

0: Okay.
1: Oh.

0: Socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब की तैयारी कर रहा है। यूनान ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। भारत से आने वाले सिख यात्रियों ने हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहब की जियारत की और मजहबी रसूमात अदा की। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तेज हवाओं, शदीद बारिशों और आसमानी बिजली गिरने के मुख्तलिफ वाकयात में 7 अफराद जान बहक हो गए। FM

अब 12 से 100% खुश कीजिए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू। कराची, कोटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, विच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, अबटाबाद एंड

tout. Écoute ça, juste.

Schlägen.

0: दिन की अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले आम खबरों का खुलासा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि बजट पर मुख्तलिफ हलकों के मुस्बत रद्दअमल से हुकूमती पॉलिसियों पर बढ़ता हुआ एतमाद जाहिर होता है। यूनान ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में तआवुन बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। भारत ने नरेंद्र मोदी के इक्तदार में रहने के जुनून ने मुल्की मईशत और आवाम को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। खवातीन के आईसीसी T20 आर्मी कप में आज बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, विच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नी, एबटाबाद एंड कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 1111.
2: The latest news headline.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

टैक्स लागू नहीं है। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी आपने लाखों रुपए तनख्वाहों वालों को रिलीफ दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं है। जिसकी तनख्वाह 50,000 से 1,00,000 रुपया है उस पर 1% टैक्स है, और 6,00,000 से ऊपर आपने देख ही लिया कि जो प्रोफेशनल्स की तनख्वाहदार लोगों की डिमांड थी उसको पूरा किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि ऐसा दौर आया था

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا

जी जी जी वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया, बढ़िया मेहरबानी है। प्रोग्राम दे विच तुसीं शामिल हो गए, प्रोग्राम का माहौल चंगा बन गया, बड़े लिसनर शामिल होने। एक गल तुहानूं मैं दसदा जावां, परेशान ना होया, टैलीफोन कोई नहीं मिलता पिया, तो टैलीफोन ना मिले तो परेशान होवण दी काइन लोड़। दो तरीके होर भी हैं, उन्हां तरीक्यां नाल भी मेरे नाल गल हो सकती है। एक तो जिहड़ा फेसबुक के कमेंट्स हैं उत्ते, फेसबुक पर तुसीं कमेंट्स कर सकते हो, तो 4471 पर मैसेज भी कर सकते हो। तरीका जिहड़ा मैं दस चुका, एक बार तुहानूं मुड़ चा दसदा कि तुसीं अगर मैसेज करना है तो फिर मोबाइल की राइट ऑप्शन मैसेज दे विच जाओ, उत्थे जाके टाइप करो 101L 101, बल्कि एल भी रहन दिओ, 101 लिखो, यानी 101, इहदा मतलब FM 101 लाहौर ते तुसीं मैसेज कर रहे हो। 101 लिख के उस तो बाद थोड़ी जी स्पेस दिओ, अपना सोहना नाम लिखो, चंगा मैसेज लिखो और उन्हों सेंड करो 4471 यानी 4471। तो जे फेसबुक पर आना तो फेसबुक के पेज पर जाके उत्थे सर्च ऑप्शन दे विच सर्च कर लेना, भला की करना, FM 101 लाहौर। जदा FM 101 लाहौर लभ लोगे, उत्थे आरजे गुलाम अली जावेद दी यानी मेरी तस्वीर होएगी, तस्वीर दे बिल्कुल थल्ले कमेंट्स की ऑप्शन होनी, उत्थे तुसीं कमेंट्स करके दसना है कि तुहानूं प्रोग्राम जिहड़ा है वह कैसा पे लगता है।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: दिन के 2 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में खित्ते की बदलती हुई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया है। इत्तला और नशियात के वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत अब मजबूती से तरक्की की राह पर गामजन है। पंजाब के गवर्नर ने अवामी फलाह, माशी इस्तेहकाम और आम आदमी के मसाइल के हल के अज़्म का इजहार किया है। खवातीन के ICC T20 आलमी क्रिकेट कप में आज बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा।

लो जनाब, एक मेरे बड़े प्यारे सोने मन मोहने भरा मेरे यार, पता नहीं उन्होंने किवें लग गया मैं प्रोग्राम कर रहा हां। शहजाद जक्कू प्रोग्राम सुनते पे ने, आईटी दे माहिर ने जनाब, पता नहीं वायरस बनाते ने या वायरस खत्म करते ने, कंप्यूटर मास्टर ने, सरकारी अफसर ने, मेहरबानियां भाई। शहजाद यकूब साहब प्रोग्राम सुनते पे आखते हैं सर मैं भी तुहाडा प्रोग्राम सुन रहा, तो मैं जनाब तुम आखदा वेलकम बिस्मिल्ला जी आया नू लस्सी पी के चने खा के

लो जी, मेरा सोने ते मनमोहना भरा मोहम्मद फैसल हाफजाबाद वनी के तरड़ लाहौर आ रहा हूँ आपके शहर सर। बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला फैसल भाई बिस्मिल्ला, फुल बिछावीए थोड़ी रावां दे विच पलकां बिछावीए भाई, तुसी आओ खुश आमदीद। लो जी फैसल ने सफर फड़िया लाहौर दा, लाहौर आले पासे आ रहे ने। मैं खुश आमदीद आखदा और तुहाडे एक ही मैसेज तीन दफा आया।

हाय दिल सौ सौ बार उजड़दा रहे। अब्दुल्ला गुज्जर रखते हैं, सर मैंने आपको कोई कामयाबी मिली है तो प्लीज बता के जाइएगा, हमें तो कोई नहीं कामयाबी मिली जिंदगी में। ना करो अब्दुल्ला गुज्जर साहब, ना करो ना करो। सर हमें तो कभी कहीं से भी कामयाबी नहीं मिली है, हम तो हार जिंदगी ने काम ही नहीं रहे। ओए होए होए होए, लो जनाब अब्दुल्ला गुजर दे दुख असी बराबर दे शरीक हैं। आखते हैं कि सानू कोई कामयाबी जिंदगी दे विच नहीं मिली, ऐसा होना नहीं, तो हम सिर्फ बयान करना नहीं आ रहा। लो जी रजा चौधरी लिख देने, छोटी छोटी बात पे नाराज मत हुआ करो, गलती अगर हो जाए तो माफ कर दिया करो। अरे नाराज तब होना जब हम रिश्ता तोड़ देंगे, और ऐसा तब होगा जब हम दुनिया को ही छोड़ देंगे।

0: एक फुल मोती दा मार के जगह सुनिए। रजा चौधरी ने एक मैसेज किया, बड़ा कमाल मैसेज रजा चौधरी का। और रजा चौधरी आखते ने वैसे तो बचपन के ही कामयाबियां मिलनिया शुरू हो गई सन, लेकिन अली भाई अगर इस मौजू पर गल करिए तो काफ़ी ज़्यादा कामयाबियां मिलिया ने, जिद क्रिकेट के ग्राउंड की जी जिंदगी है मेरी वो बड़ी एक कामयाब जिंदगी है, सोहनी जिंदगी है और कामयाबियां भरी हुई है। लेकिन आखते ने उस तू वड्डी जिस रेडियो की दुनिया के जी कामयाबी मैं मिली है, मैं समझागा कि यह सब तो वड्डी कामयाबी है। और यह है कि मेरा एक मकसद आई कि मैं एक पूरा ग्रुप बनावा, उस ग्रुप के मुख्तलिफ ज़िले के सूबों के लिसनर जोड़े ने वो शामिल होवन। और आखते हैं कि अल्लाह का करम ही होया कि असी एक क्लब बनाया, असी एक ग्रुप बनाया लिसनर का, जिहड़ा कि पूरी दुनिया के लोग वो शामिल हो गए हैं। और वो ग्रुप जोड़ा है वो पूरी दुनिया के मुतारिफ है, और असी एक वक्त बह के पूरी दुनिया के दोस्तों नाल गलबात कर सकते हैं। नाल रजा भाई ने थोड़ा जहा फिर मैनू मक्खन लाया और आखते हैं कि यह सारा कुछ जोड़ा है ये थोड़े प्रोग्राम की वजह तो मेरी पहचान बनी है, मेरा ग्रुप बनया, और जी खास करके थोड़े प्रोग्राम के मैं इज्जत मिलती है, इस इज्जत ने मैं पूरी दुनिया से मारूफ कर दिता, तो मैं थोड़ा शुक्रगुजार हूँ। और नाल सलाम आखे ने पूरे पाकिस्तान वाले वास्ते, पूरी दुनिया वाले वास्ते, और FM 101 की टीम वास्ते। रजा भी बहुत शुक्रिया।
1: शक नहीं यासीन दे दर्दा दी आवाज फलक तई।
0: लो जी कमल नाज आखते हैं कि अल्लाह ताला दा शुक्र है जिंदगी विच अल्लाह ताला दी मर्जी ते रजा नाल ज़्यादातर कामयाबियां हासिल कीतियां ते कामयाब होने वास्ते बहुत जतन किए ने, लोकां दा गल्लां सुना सुनियां ते अगे भी अल्लाह ताला दे हुक्म नाल कामयाबियां हासिल करनियां ने, ते अपना घर अपना कारोबार शामिल है। क्या बात, बहुत सोहना कमलनाथ साहब मैसेज थोड़ा।

और एक फुल मोती है दही क्यों मारे जगाया तो जा सकता है ना, बाजा उचिया देख के पानी ठंडा सुट के भी तो बंदा जगा सकता है। लो जी ये गल्लां करदे हां, मैनू एक गल मेरे जहन च आई अज्ज दे टॉपिक ते, ओए कि असी जिसल काम करदे हां ना, यकीन करो सच्ची गल ईमानी कुरानी गल भाई इंज है भी अपने मन वास्ते अपने जमीर दी सैटिस्फैक्शन वास्ते जिहड़ा भी काम करो वह चंगा करो, वो बेशक अपना काम होवे या किसी का कर रहे हो, कोई मौजूद होवे कोई ना होवे, कोई निगरानी कर रहा होवे ना कर रहा होवे, लेकिन काम दिल नाल करो, सफाई नाल करो, अच्छा करो, इस वास्ते कि काम तुसी अपना कर रहे हो, रिज़्क अपना हलाल कर रहे हो, लेकिन शाबाश लोगों की जदों तुसी अपना करैक्टर अच्छा कर लेंदे हो, तुसी अपने काम दे विच कमिटेड हो जाते हो और काम दे विच पुख्ता हो जाते हो, तुसी किसी का इतमाद नहीं तोड़ते, ठेस नहीं पहुँचाते, तो फिर कामयाबियां तुहाडा मुकद्दर बन जांदियां। हाँ इहदे विच कुछ लोग ऐसे ने कि अच्छा काम करते करते करते नीतां साफ रखते रखते एक मकाम ते आके डिसआर्ट हो जाते हैं, उन्होंने डिसआर्ट होने की नहीं जरूरत होंगी, अल्लाह पाक की हिकमत मौजूद होंगी है कि अल्लाह पाक ने किस मोड़ दे विच तुहानू उसका अजर देना, तो सो घबराया ना करो, घबरा जल्दी ना जाया करो। मेरी इस गल करन दा मकसद यह आ कि असी कोई भी काम करिए ना, तो वो असी अपने जमीर नू सैटिस्फाई करिए, जमीर नू सैटिस्फाई करिए पॉजिटिविटी ते मसबत अंदाज दे विच, और उहदे विच इह होवे कि साडे काम ते कोई बंदा गल ना करे, उहदे उत्ते कोई हरफ ना आवे, कोई तनकीद ना होवे, कोई बुरा ना कवे, कोई कंडू पिछे सानू गलत ना कवे। ये गल असल मेरे जहन च इस तो आई कि अज एक बजुर्ग दे नाल बैठण दा मौका मिलिया, तो उन्होंने बिल्कुल एक छोटी जी मिसाल दिती कि फलां जगह ते काम कीता, उहदे विच छोटी जी गल ऐसी लेकिन यह मैनू सुननी पई, काश कि छोटी जी भी गलती मैं ना कीती होंदी तो मैनू गल नहीं सी सुननी पैनी। यह वाकया सुना रहे सन कोई 20 साल पहले का, लेकिन अज तक वह कुड़ रहे कि छोटी जी गलती अगर मैं ना करता तो उस बंदे नाल मेरा हमेशा अच्छा तल्लुक रहा, अच्छिया यादा रहा, लेकिन हल्की जी गलती एवें कख भर गलती, उन्होंने लफ्ज़ बोलिया कख भर गलती हा, लेकिन उसते मैनू गल सुननी पई, काश वो गलती ना हुई होंगी। सो इज्जत बनावन वास्ते बड़े वरे लगते ने, बड़िया मेहनत और बड़े जतन करने पाते ने, और शर्मिंदगी वास्ते तुहानू पता ही है कि मिनट लगता लम्हा लगता। अब्दुल नूर हाशमी आखते ने रिवाज गार्डन तू कि जवेद भाई जिंदगी में बहुत मेहनत की, साइकिल से कार पार आया, बड़ी वेरी गुड, लेकिन यह दसना ना भी ये कि जतन किए कि कामयाबियां मिली। अब्दुल नूर हाशमी साहब सानू दसो कि तुम कि कामयाबी हासिल की है। मुनीर अहमद खान चांडियो बलोच तहसील जनूबी तू मेरे प्रोग्राम शामिल ने आखते ने मेरे प्यारे भतीजे कारी मोहम्मद कासिम साहब आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके लिए दुआ गो है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया, तुसी जिंदे रहो सलामत रहो, तुहाडियां मुहब्बतां मेरे नाल रही ने, और अज के प्रोग्राम दे विच तुहाडे मैसेज सब तो ज़्यादा ने, मैनूं बहुत अच्छा लगा कि तुसी इस प्रोग्राम दे विच मेरा हौसला वधाउंदे हो। एक गीत अपने तरफों डेडिकेट कर रहे हैं तुहानूं।

control, even if you know that you don't own me. I'll let you

0: 4 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Farhan Naz. First, the headlines. Deputy Prime Minister and Foreign Ministers of Turkey and Egypt have telephonically exchanged views on evolving regional situation. Information Minister says budget for next financial year is relief-oriented and caters to demands of all segments of society. People of Azad Jammu and Kashmir have rejected protest call by banned Joint Awami Action Committee.
1: This is FM.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए अहम पैगाम सदर पाकिस्तान की खसूसी हिदायत और वजीर आजम पाकिस्तान के कैशलेस इकोनॉमी विजन के तहत बेनजीर कफालत प्रोग्राम की आइंदा किस्त की अदायगी अब होगी सिर्फ और सिर्फ बेनजीर मोबाइल सिम पर खुलने वाले डिजिटल वॉलेट अकाउंट के जरिए तो जिन मुस्तहिक खवातीन ने अभी तक बेनजीर मोबाइल सिम नहीं ली वो अभी अपना जाती मोबाइल फोन साथ लेकर करीबी BISP दफ्तर जाएं और अपनी बेनजीर मोबाइल सिम मुफ्त हासिल करें याद रखें बेनजीर मोबाइल से मुफ्त हासिल करने की आखिरी तारीख 15 जून 2026 है कतार ना इंतजार खवातीन होंगी बाइख्तियार बेनजीर का बेनजीर ख्वाब हर औरत खुद मुख्तार बाइख्तियार
1: दिस इज FM
4: 101.1 कराची लाहौर इस्लामाबाद पेशावर क्वेटा हैदराबाद फैसलाबाद सियालकोट मुल्तान बहावलपुर सरगोदा लारकाना मिट्टी बिच्छा खैरपुर कोहाट बन्नू एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
1: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: किड़ किड़ किड़ किड़ कैन किणा गण कैन किणा गण कि ग्रहा किड़ किड़ किड़ किड़।

0: E-Power, the ultimate power solution.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुशकी जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Vichha, Khairpur, Kohat, Bannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: Sunte rahiye, FM 101.
5: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीदें सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। एई पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। एई पावर, दी अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
6: हमसे है रोशन ये जहां,
7: हमसे है

सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: निकाह खुशियों भरे एक खूबसूरत सफर का आगाज है। इसका बरवक्त इंदराज एक कानूनी तकाजा है जो इस सफर को महफूज बनाता है। निकाह के बाद एक अहम काम अक्सर नजरअंदाज हो जाता है जो आगे चलकर परेशानी का बाइस भी बन सकता है, लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील यकीनी बनाएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में शादी का इंदराज कानून की नज़र में आपकी अज़दवाजी हैसियत का एतराफ है जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड और दीगर सरकारी अमूर में मददगार साबित होता है। यूनियन काउंसिल में निकाह का इंदराज होने के बाद करीबी नादरा दफ्तर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
5: सुनते रहिए FM 101.
6: सूरज की किरणें हर सुबह लाती हैं एक नया उम्मीद सफर, पर बिजली के बिल और लोड शेडिंग का अंधेरा करता है सबको फिक्रमंद। अब अंधेरों को कहो अलविदा और रोशनी को अपनाओ। AE पावर से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE पावर, द अल्टीमेट पावर सॉल्यूशन।
7: हमसे है रोशन ये जहां,
8: हमसे है

0: AE Power, the ultimate power solution.
1: शादीशुदा जोड़ों के दरमियान अलहदगी या तलाक जिंदगी की तल्ख हकीकतों में से एक है। ऐसे मौके पर एक अहम कानूनी जिम्मेदारी अक्सर नजरअंदाज हो जाती है, जो आगे चलकर गैर जरूरी पेचीदगियों का सबब बन सकती है। लिहाजा इस काम की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। तलाक या खुला के बाद नादरा रिकॉर्ड में अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा रिकॉर्ड में अज़दवाजी हैसियत का दुरुस्त रिकॉर्ड आपकी कानूनी हैसियत का बकायदा एतराफ़ है, जो मुस्तकबिल में शनाख्ती कार्ड की तजदीद, बच्चों के बेफॉर्म शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट के इजरा, खानदानी रिकॉर्ड की दुरुस्ती और दीगर सरकारी अमूर में आपके लिए आसानी पैदा करता है। तलाक या खुला की कार्रवाई और यूनियन काउंसिल में इंदराज मुकम्मल होने के बाद करीबी नादरा रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं या पाक आईडी मोबाइल ऐप के जरिए अपनी अज़दवाजी हैसियत अपडेट कराएं। नादरा, आपकी शनाख्त, आपकी पहचान।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
3: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
4: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
3: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
5: दिस इज FM 101.1।
6: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: Coke Studio, Season 14.

सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

सुनते रहिए FM 101 101।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्की और मिस्र के वज़राए खारिजा से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान खित्ते की बदलती हुई सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि आइंदा माली साल का बजट रिलीफ पर मबनी है और जो मुआशरे के तमाम तबकात की जरूरियात को पूरा करता है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि हैदराबाद सक्खर मोटरवे आइंदा 3 से 4 साल में मुकम्मल हो जाएगी। बर्मिंघम में खवातीन के ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। और अब इन खबरों की तफसील। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार ने तुर्की के वज़ीर खारजा हाकान फैदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Alright, assalamu alaikum, assalamu alaikum to all of you. Welcome to the station that is Sound of the Music. Alkum Ezwan Muhammad Yusuf Aldabilam from the federal capital city of Pakistan, the beautiful, beautiful, beautiful Islamabad. Lahore, Karachi, Islamabad, Faisalabad, Quetta, Peshawar, Hyderabad, Sialkot, Multan, yani ki pura Pakistan aur Pakistan se bahir puri duniya mein radio.gov.pk par aap sun rahe hain Shining Frequency FM 101 ki. और FM 101 के इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान मोहम्मद यूसुफ. ठीक रात के 12 बजे तक आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शबगप. बहुत सारी बातें, बहुत सारा फन प्रोग्राम. एक टॉपिक होगा जिस पर हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ लाइव एक्सक्लूसिवली.

चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। और पाकिस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं हैं, नेक ख्वाहिशात है, जो जहां रहे खुश रहे। द प्राइड ऑफ पाकिस्तान उस्ताद नुसरत फतेह अली खान। ओए होए।

जी वेलकम करेंगे, साथ साथ आपको बताते चलेंगे आज टॉपिक हमने क्या चूज किया है आप लोगों के लिए। ऐसे टॉपिक नहीं है, हम आपको कुछ अल्फाबेट बताएंगे उससे मिलते जुलते, ये शायद मैंने पहले भी कहीं रखा था टॉपिक, उस अल्फाबेट से रिलेटेड आपने नाम बताना है, जगह बतानी है, कोई एनिमल जो है वो बताना है। चले आपने दो चीजें बता देनी है, ठीक है, कोई भी प्लेस भी बता सकते हैं, एनिमल भी बता सकते हैं, लेकिन कंपलसरी जो है आपने नेम बताना है। आप लोगों के पार्टिसिपेशन को मैं शामिल करूंगा 10:30 की ब्रेक के बाद। थोड़ी सी गेम खेलते हैं आज, हमारे साथ भी गेम्स हो रही है तो मैंने कहा चले हम भी गेम खेलते हैं। कभी ऐसा हो कि अचानक आमना सामना हो जाए, ऐसे ही रैंडमली

0: इतने तेज तो ना मैं गा सकता हूँ ना मैं इस पे कोई बात कर सकता हूँ। मैंने कहा जरा सुरूर लेते हैं सॉन्ग का, इश्क और सुकून वो भी दोनों एक साथ, रहने दो गालिब कोई अक्ल की बात करो, है ना। ओके जी, 10 बजकर हुआ जाते हैं 31 मिनट, और मैंने कहा चले आज कोई कमर्शियल है नहीं है तो आप लोगों के साथ डायरेक्टली हम बातचीत करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा वो अल्फाबेट, वो मैं आपको ए बी सी में बताऊंगा, थोड़ा सा आसान कर देते ताकि समझने वालों को समझ आ जाए, वैसे तो सारे समझदार ही हैं कि ए से लेके जेड तक मैं आपको कोई ऐसा लेटर बताऊंगा, कोई ऐसा ए बी सी का वर्ड बताऊंगा जिसमें आपने उस अल्फाबेट से रिलेटेड नाम बताना है, और उसके साथ साथ उसका काम नहीं बल्कि प्लेस का नाम बताना है, किसी पर्सन का नाम बताना है, प्लेस का नाम बताना है, और एनिमल का नाम बताना है। वाह वाह, वैसे अगर जुशान इस वक्त में आपकी कोई वीडियो यहाँ पे पोस्ट कर सकते, ये होती है देखें, एक आपका डिपार्टमेंट होता है ना उसके साथ आपकी क्वालिटी ये होती है कि आप किसी भी वक्त किसी भी, अब ये तो किसी एडवेंचर से कम नहीं है, एडवेंचर है, मतलब पूरी घर जैसी फीलिंग आ रही है। सोनी नाम शाम कलर सईदा, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप आए हैं। वैसे मैं ये लास्ट फ्राइडे को हमारे एक ऑफिस के कलीग थे, उनकी पी पी पी पी पी थी, और हम गए थे वहाँ पे बलीमे पे, और बड़ा अच्छा इलाका है वैसे। जी आप लोगों की कॉल शामिल करेंगे 0511111001 एंड 9202540। ये क्या मैसेज है ये, प्लीज अपना नाम लिखें, जो भी आप मैसेज में आपने लिख भेजा है ये मेहरबानी करें। असि नाजुक दिल दे लोग हां, जी आप लोगों की कॉल शामिल करेंगे, और फेसबुक जी फेसबुक पे स्टेटस मौजूद है, असि कटांगे थोड़े जी ने सबर करो। हाँ तो जी देखते हैं कौन है, कहां से है हमारे साथ, और क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं, और टॉपिक के हवाले से थोड़ी बहुत अगर समझ नहीं आई तो मैं जब आप कॉल करेंगे तभी मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आपने कैसे इस गेम में खेलना है, ताकि हमारे पास नए से नए नाम भी आ जाएंगे। किसी मेहरबाने आके मेरी जिंदगी, ज्यादा सुरीला में हो जाऊंगा फिर थोड़े हाथ नहीं आना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तारुफ करवा दें, कौन बोल रहे हैं कहां से? जल्दी से पूछे थे कि कोई गिफ्ट हैंपर लगना थोनो। ओके जी, आप मुझे यू से बता दें, यू से नाम बताएं, प्लेस बताएं और एनिमल बताएं।
1: यू का नाम उमे हबीबा।
0: उमे हबीबा।
1: यू का नाम
0: जगह का नाम बता दें, एनिमल चैलेंज कोई बात नहीं। यू
1: यूके
0: यूके
1: यूके
0: यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड किंगडम यूके। अच्छा आपको नहीं पता, चलें ठीक है सही है, और उमे हबीबा और यूके, ठीक हो गया, ठीक है। ओके थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का।

0: 0501111001.
1: अच्छा जी, अभी अभी या कि हम वैसे कभी कभी हम किसी को समझने में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। सब लोगों की पार्टिसिपेशन को शामिल करते हैं, देखते हैं कि जी कौन कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र अल्लाह का, तारुफ करवा दें अपना।
2: मैं फजल महमूद बात कर रहा हूँ, कराची से हिजरत कॉलोनी वाला।
1: कैसे आप? ठीक है,
2: बस आपका शो सुन रहा हूँ। मैं तो इंतजार में था कि शो करे तो हम जाके एंजॉय करें।
1: अच्छा ठीक है, तो हम खेलें फिर।
2: यार यूसुफ भाई, दो दिन से जो है ना मैं सुन नहीं पा रहा था ना, तो मैं सो जाता था, तो मेरे कुछ चाहने वाले वो पता नहीं क्या समझ बैठे।
1: नहीं नहीं, आपके कोई नहीं है फिलहाल। ओहो, नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई चाहने वाले इतने नहीं है जो आपके लिए इतने है। हमारे लिए कोई नहीं, यहाँ पे इतना तड़पता, आपके लिए कौन तड़पता होगा?
2: मेरे कुछ है, कुछ मुखालिफ भी है।
1: नहीं नहीं, अड्डा तुसी कड़े जंगजू तुसी आए, अड्डे तुसी ग्लैडिएटर लग गए ना किते। अच्छा हम खेलते हैं, खेलते हैं, ठीक है ना। बाकी किसी के आने से, किसी के चले जाने से ना जिंदगी थम नहीं जाती है, ठीक है।
2: कोई बात नहीं।
1: चले ठीक है, वाय से बताए, वाय से पहले नाम बताए।
2: यासीन।
1: और जगह का नाम बताए।
2: जुमला जेजी, ड्रामो वाली।
1: ठीक है चले नेक्स्ट। जगह का नाम बताए,
2: जगह का नाम बता दे,
1: जगह का नाम बता दे। क्यों नहीं आ रहा? मुल्क का नाम नहीं आता आपको? वॉइस है
2: जुमला जेजी का नाम आया मेरे को, वो यासीन आ गया।
1: अड्डे तो तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है वैसे। चलें सोचें फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। सुनाए
2: यार, कुछ दोस्त सुन रहे हो मेरे यार, अगर नहीं नहीं
1: मैं नेक्स्ट, ठीक है नेक्स्ट सॉन्ग मैं उनके लिए चलाऊंगा, ठीक है।
2: अच्छा इस्लामाबाद में भी होती है,
1: ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अल्लाह हाफिज। और 0511111001। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहां से? बिलाल बात कर रहे हैं, कहां से?
3: हैदराबाद
1: से। किसी ने मारे है दोनों? अच्छा चले ठीक है, तो खेलेंगे हम। चले आप बी से ही बता दें।
3: बी से बिलाल।
1: और
3: बी से बर्मा।
1: बी से बर्मा, अच्छा
3: जी।
1: और बी से एनिमल।
3: बटरफ्लाई।
1: अच्छा ठीक हो गया, सही हो गया, मतलब दिमाग चलता है लोगों का ना
3: जी।
1: और कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया बिलाल आपकी कॉल का, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं।

0: एक बार कहो तुम मेरी हो। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह खैर करे जी, पूरा हफ्ता जो है वो इंतजार करते रहते हैं आप, और बहुत बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेजेस का। देखिए जी, नाम जो होता है वो आपकी एक पहचान होता है, मजीद आप लोगों की पार्टिसिपेशन को शामिल करेंगे प्रोग्राम में, और देखेंगे कौन कहां से हैं। आज जो लोग हमें अभी जिन्होंने सुनना शुरू किया उनको बताते चलेंगे, प्रोग्राम में टॉपिक है कि हम आपको अल्फाबेट बताएंगे, कोई भी ए बी सी जेड, और उसमें आपने सबसे पहले हमें बताना है किसी शख्स। यार ये लफ्ज़ जो है ना मेरे दिमाग से निकलता नहीं है, शख्स वाला, क्योंकि इसके साथ एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो भी सुनाऊंगा किसी दिन आपको। तो उस अल्फाबेट में आपने पहले किसी शख्सियत का नाम बताना है, फिर किसी जगह का नाम बताना है, और थर्ड अगर आपका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है तो आपने किसी एनिमल का नाम भी बताना है। 0511100101 हमारा कॉलिंग नंबर है, आप लोगों के पार्टिसिपेशन को मैं शामिल कर रहा हूँ साथ साथ। तो देखते हैं कि नेक्स्ट कौन है, कहाँ से है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से?
1: जी मैं लाहौर से रिमशा भाई, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। क्या कहना चाहेंगे रिमशा, आप रेडी हैं?
1: जी मैं रेडी तो हूँ, लेकिन आपके सामने बड़ा डर लगता है।
0: मेरे सामने बड़ा डर लगता है, मैं तो सामने हूँ ही नहीं आपके।
1: जब भी गेम हो ना तो बंदा ऐसा सोचता है कि कहीं हार ही ना जाए।
0: मैं पहले सोच रहा था अंताक्षरी जो है वो हम किसी दिन स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा आसान है।
1: ओके और आपका शुरू में भी जो है शो काफी प्यारा लगा है, आपने आगाज भी बहुत प्यारा किया इस बार।
0: थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। तो आप हमें बताएं जी,
1: कैसे कैसे पहले नाम बताना है या?
0: जी जी नाम बताना है पहले।
1: अलिशबा?
0: ए नहीं, के के।
1: अच्छा के।
0: जी नेक्स्ट।
1: और नेक्स्ट जगह का नाम?
0: जगह का नाम
1: कराची।
0: करांची। और
1: एनिमल का?
0: एनिमल बता,
1: जानवर का नाम बताना है। कैसे?
0: ये ना कछुआ कह दे रहा हूँ।
1: ओके कैसे?
0: कबूतर।
1: ओके
0: क्या कैसे कबूतर होता है?
1: एक मिनट, आप मतलब ये जो आम जानवर होते हैं उनके नाम
0: बोल रहे
1: हैं?
0: नहीं मेरी कोई रिश्तेदार के जानवर के नाम जड़ा दोनों ना है वो तुझे दसो।
1: ओके आने
0: में बता दिया भी सही है। तो बताए
1: ना कैसे कबूतर? नहीं कबूतर, एक कैसे
0: एक चले मैं आपको हिंट देता हूँ, एक कंट्री है उसका वो नेशनल एनिमल भी है। चले और बताएं।
1: पाकिस्तान का
0: है? मैं कह रहा हूँ किसी और कंट्री का है, पाकिस्तान का है। जरिए छाला बोल, मार छाला भी मार दे और बसो। तो हमने कौन से पाल कर रखा है उसको, हमने भी देखा ही है।
1: अच्छा।
0: उसकी एक लंबी सी टेल भी है।
1: क्या चीज है?
0: उसकी एक लंबी सी दुम भी है।
1: लंबी सी दुम भी है?
0: एक कंट्री है उसका वो नेशनल एनिमल भी है। और छलांगे भी बहुत लंबी लंबी मारता है।
1: टांगे तो भाई लोमड़ी की लंबी होती।
0: नहीं, उसकी जो पिछली टांगे वो ज्यादा बड़ी हैं, अगली छोटी हैं। और बताएं, इससे ज्यादा क्या हिंट दूं?
1: टांगे जो हैं बड़ी हैं और अगली जो है छोटी हैं। हाँ अच्छा, ऐसे जानवर नहीं देखा।
0: अच्छा, कैंगरू।
1: कैंगरू के
0: अभी ये वैसे लाइव शो ना होता ना, तो के से बड़ी चीजें निकल आनी थी। इतनी मैंने आपको
1: बिल्कुल
0: हिंट दी है।
1: बिल्कुल। तो ये कहते हैं कि जो लोमड़ी होती है उसके भी पीछे से टांगे लंबी होती है और आगे से लंबी
0: मैंने
1: छोटी होती है।
0: आपको मैं भी मैं कह रहा रिश्तेदारी है जानवरों के नाल, मैं तुम्हें इन्हीं हिंट दी है मैं कि लंबी जी दम है, और क्या बताऊं मैं
1: नहीं, ये
0: उसकी।
1: दम से लोमड़ी भी लंबी होती है, नाक भी वट्टी होती है।
0: नहीं तो वो किसी कंट्री का नेशनल तो एनिमल है नहीं है वो।
1: ओके, यानी ये बाहर के मुल्कों में होते हैं।
0: ठीक है, सारा दिमाग तो मेरा चला वैसे। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
1: ओके जी, अल्लाह हाफिज।
0: अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा दिमाग चलाया करो कि मतलब मैंने थोड़ा ना रेडियो लेके बादाम खोल दे रहा। 051111 0101 हमारा कॉलिंग नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं।

0: ओके जी, मस्जिद कॉल्स, आप लोगों की कॉल्स आए। वाओ, कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन कहाँ से? आतिफ अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम जब से आपके पड़ोस में, आप गायब ही हो गए। रश कहाँ पे होता है? मैं कोई ठाल चौक के सेंटर में रहता हूँ। किसके आप? क्या हमारे? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा कुछ
1: भी नहीं। दोबारा की सालत नहीं देता, आईडी कार्ड दिखाना पड़ता है।
0: हाँ, यो बात भी है। और बालो
1: ये अल्लाह की शुक्र, ठीक ठाक
0: ठीक है। शुक्र अल्लाह ना।
1: आई कोई बढ़िया गेमर से हम खेलने हो?
0: मैं क्या खेली की नहीं ना, क्या पता निकी होना ना खेली हो अंत।
1: ये नन्या खेल गया हूं
0: ना, ना खेली ना।
1: हां बढ़िया, चक्कर लगा है कोई ना लगा गर्मी
0: गया समय ईदीपुर।
1: चलो ये कितने दिन रहे हो?
0: कोई नहीं, ऐसा ना एक ही दिन ना विजिट होना, बस आना जाना।
1: ये तो भैया गेम जब खेल रहे हैं तो हम भी ट्राई कर सकते हैं।
0: जी जी, बॉन्टे खेलते हैं ना, बॉन्टे
1: बॉन्टे खेलेंगे ना, आप बताएं।
0: अच्छा बताते हैं आपको, सब्र करें।
1: आप तो खेलेंगे या दायरा खेलेंगे, क्या खेलेंगे?
0: हम आपको एक अल्फाबेट बताएंगे, आपने मुझे बताना है पहले किसी इंसान का नाम, फिर किसी जगह का नाम, और अगर आप समझते हैं आप बहुत ज्यादा जीनियस हैं तो आप मुझे बताएंगे किसी एनिमल। अच्छा ठीक हो गया, सही है। आप मुझे बताएं जी, एफ
1: एफ
0: एफ एफ
1: एफ
0: जी जी, ए बी सी डी ई एफ।
1: फारूक।
0: फारूक, जगह का नाम?
1: फैसलाबाद।
0: फैसलाबाद, और एनिमल का नाम? फिश। व्हाई?
1: कितने पॉइंट मिले आप?
0: आपके पॉइंट्स अभी भी माइनस में है।
1: नहीं, अभी माइनस में क्यों है?
0: अभी गर्मी है ना, अभी गर्मी है इस वजह से।
1: ये क्या बात है यार, अभी तक किसी ने तीन का सिंपल आंसर नहीं दिया। मैंने दिया
0: है? नहीं नहीं, पहले भी दिया।
1: तो करना चाहिए ना आपको,
0: अप्रिशिएट। देखे ना, मैंने दोनों हाथ ऊपर किए हुए, आपको थम्स अप कर रहा हूँ। हाँ देख लें, मतलब लोगों को पता चले कि यार कि जो हमारे ग्राही हैं वो इंटेलिजेंट हैं।
1: आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि मैं किस रिजल्ट बता दें बेचारे ये काफी के लिए।
0: कौन सा वाला?
1: वो जो चल रहा है रिंगम में।
0: कौन सा? फीमेल्स वाला?
1: हाँ वही।
0: पाकिस्तान हार गए जी 64 रन से।
1: आए
0: आए आए आए। चलो ठीक है, सही है।
1: आपसे बात करके अच्छा लगा, सलामत रहे, खुश रहे, तो आप धन्यवाद, अपना जारी रखें, अच्छा
0: लगता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ओके जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ओके जी, अब्दुल हमीद वारसल मौजूद हैं कराची से, और आपके सवाल ही आपने वक्त ना दिए तो क्या चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, हमें सुनने का बर्दाश्त करने का।

10 बजकर हुआ साथ है सामीन 56 मिनट और कुछ लोगों को ना वैसे ही इशू होता है कि अगर कोई इंसान खुश हो जाए ना और जब उसको पता चल जाए कि उसकी खुशी की वजह ही आप हैं।

एक सॉन्ग ब्रेक वापस आएंगे न्यूज हेडलाइंस के बाद, और सॉन्ग ब्रेक के बाद एक खूबसूरत सी आवाज आप लोगों की नजर और किसी मेहरबान ने आके मेरी जिंदगी सजा दी। स्पेशली आपके लिए।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से ख़बरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने तुर्की और मिस्र के वज़रा ख़ारिजा से टेलीफोन पर बातचीत के दौरान खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर इत्तला'आत ने कहा है कि आइंदा माली साल का बजट रिलीफ पर मबनी है जो मआशरे के तमाम तबकात की ज़रूरियात को पूरा करता है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इंसानी हकूक की बैन अल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो भारत को मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों की जायदादें जब्त करने से रोकें।
1: This is FM
2: 101. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0501111001, लेकिन सबसे पहले हम शामिल करेंगे आप लोगों के फेसबुक के कमेंट्स जो हमें मौसूल हुए हैं facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान के ऑफिशियली पेज पे।

माशाल्लाह मौजूद है किशोर आरिफ की फ्रॉकिंग आर्ज। थैंक यू सो मच। देखें जी, अभी आपके लिए मैसेज भी आ गया था कि आपने केक हमें खिलाया जी, बताएं अब आपने केक क्यों नहीं खिलाया। कहते हैं जी खुश आमदी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का और कमेंट्स का। शफत अली हमारे साथ मौजूद हैं शुजाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी नहीं मिलती है दोबारा वक्त बदलने के लिए। वक्त की कदर करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।

ठीक है जी, मेरी यारी ढूंढने के लिए मैं कोई एक मैनेजर जो है वो हायर करता हूँ, जो आप लोगों को मेरी आईडी जो है वो करेक्ट बताएंगे कि कौन सी आईडी मेरी, ठीक है?

ग्यारह बजकर हुआ से आते हैं 10 मिनट आपका मेरा साथ रेगिस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे। वैसे समझा मैं कभी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ कि सरप्राइजली आप सोच रहे हो किसी को और वो आपके सामने हो।

चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी। वैसे इश्क में कोई मजबूरी होनी चाहिए, ये होती है।

ये सवाल है आपसे, बताइएगा। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी, लोगों का क्या समझाने दो, उनकी अपनी मजबूरी। क्या मैंने दिल की बात रखी और तूने दुनिया वालों की, मेरी अर्ज भी मजबूरी थी, उनका हुक्म भी मजबूरी। रोक सको तो पहली बारिश की बूंदों को तुम रोको, कच्ची मिट्टी तो महकेगी, है मिट्टी की मजबूरी। चाहत में क्या दुनियादारी, इश्क में कैसी मजबूरी।

ओके जी, मैसेज है कि सवाल बहुत अच्छा है मगर इसका जवाब जरा सा तल्ख है जी, बताएं आप, जरूर हम शामिल करेंगे। इवन कि आप कॉल कर सकते हैं 0511111001। मतलब लोगों की मेंटालिटी का जो है वो पता चलता है कि सिर्फ उनके नज़दीक ये सोशल मीडिया, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, मतलब ब्लॉग करते हैं तो ऐसे कि बस इंसान को चीज़ों को फेस करना चाहिए, उनको फेस करें और ताकि पता चले कि हाँ। अब इंसान छोड़े तो सब कुछ पता चले कि हाँ जी सब छोड़ा है। चल हट।

0: तो किसी मजीद आप लोगों के पार्टिसिपेशन को शामिल करते हुए देखते हैं कौन कहां से है, मिस्टर झूठ झूठ क्यों हैं आप हमारे साथ यहां पे। मुझे सुनने वालों को बताते चलते हैं कि नेक्स्ट, क्योंकि मुहर्रम अल हराम जो है वो स्टार्ट होने वाला है 2 दिन बाद, तो नेक्स्ट शो मेरा नहीं होगा, उसके नेक्स्ट वाले भी अगर जिंदगी रही तो जरूर मिलेंगे, लेकिन ऐसे ये लाइन जब रिपीट करते हैं ना कि जिंदगी जिंदगी ये जिंदगी क्या है, जिंदगी के हवाले से भी हम बात करेंगे आपसे कि जिंदगी जो है वो क्या है,
1: मिलके
0: क्या है जिंदगी।

ओके, जल्द से कुछ कॉल्स जो हैं वो शामिल करते हैं, फिर हमें स्पेशल सेगमेंट की तरफ भी बढ़ना है, ओल्ड गोल्ड नंबर्स की तरफ, और उसमें क्योंकि आपको आइडिया है कि कॉल्स नहीं होती हैं।

में तो लोगों का हिसाब होता है ना कोई मकाम। लोग इश्क में आते ही नहीं इश्क से, बस आशिक और माशूक मंसूब होते हैं। क्या अच्छी बात है, अच्छी बात है।

0: Okay, G calls. Assalamu alaikum. Mr. Tutut. Assalamu alaikum. Hello?
1: Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, kaun kahan se?
1: Krishna Amir Abbasi baat kar rahi hu Islamabad se.
0: Kaun? Krishna Amir Abbasi baat kar rahi hu Islamabad se. Acha, naam mujhe abhi samajh nahi aaya, dobara bata dein.
1: Ji, main Krishna baat kar rahi hu Islamabad se.
0: Acha, theek hai ji, kaisi hain aap? Theek hain?
1: Alhamdulillah, Allah ka shukr, aap bataye.
0: Alhamdulillah, theek thaak, Allah taala ka karam hai.
1: Ji, first time aapka show dekha hai, mujhe honestly bahut interesting laga aapka show.
0: Acha, mujhe to nahi laga waise.
1: Aapko kyun?
0: Pata nahi. अच्छा तो खेले हम
1: जी
0: स्टार्ट करें ठीक है पी से आप बताएं पी
1: पी से
0: पी
1: नेम पहले
0: पहले नेम बताएं
1: पाकीज़ा नेम
0: पाकीज़ा अच्छा और जगह का नाम
1: पाकिस्तान
0: ओके और एनिमल का नाम
1: एनिमल पीकॉक पैरेट पैरेट तो बर्ड में आ जाएगा
0: पैंडा पैंडा
1: पीकॉक
0: ठीक हो गए सही है अंबासी हैं तो मरी से होंगे हैं मतलब मेरे ग्राई आज सारे ग्राई मेरे ही आ रहे हैं आज
1: अच्छा आप भी मरी से
0: तो मेरी शक्ल तो नजर नहीं आ रहे थोड़ा अगर आप मुझे कह रही हैं मैंने आपको शो फर्स्ट टाइम देखा है तो आपने कहाँ देखा है
1: नहीं मैंने देखा तो नहीं आपको
0: आपने मुझे कहा है कि मैंने आपका शो आज फर्स्ट टाइम देखा है
1: सॉरी सुना है मैंने आपका
0: अच्छा, शो सुना है ठीक हो गया सही है ठीक हो
1: गया अच्छा
0: देखिए इसलिए मैं कहीं पे आपको नहीं मिलूंगा
1: जी?
0: किसी भी सोशल मीडिया के मीडियम पे मैं आपको नहीं मिलूंगा
1: यस यस
0: यस यस अच्छा चले ठीक है सही है
1: आवाज आई कट रही है आपकी प्रॉपर आ नहीं पा रही तो आई डोंट नो मैं क्या बोल रही हूँ क्या सुन रही हूँ
0: अच्छा चलें ठीक है जो भी आपने कहा अच्छा सुना अच्छा बोला अच्छा कहा और हमने भी अच्छा सुना
1: बहुत शुक्रिया मैं आतिफ अब्बासी की भांजी हूँ एक्चुअली
0: अच्छा अच्छा ओके आतिफ अब्बासी की आप भांजी हैं ठीक हो गया फिर उनको भी सलाम अभी उनकी कॉल आई थी थोड़ी देर पहले वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया
1: थैंक यू बहुत शुक्रिया
0: ओके अल्लाह हाफिज़ थैंक यू सो मच जी बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का मेरा गम और मेरी हर खुशी

हर खुशी। गैर बस के रूप से आते हैं सामान 32 मिनट और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। इंसान इंसान क्या है जी, क्या औकात है इंसान की। लेकिन बला की एक फूक है इसके अंदर। उसको अपने सिवा सब जो है वो अपने से कमतर लगते हैं। और जितना आप किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं शामिल करूँगा इस हवाले से भी मेरे पास एक कलाम था उसको और बहुत ज़्यादा रिलेट करता है उसमें। सूरज टुरदा नाल बराबर, सूरज टुरदा नाल बराबर, दिन क्यों लंगड़ साल बराबर।

सूरज टुटदा नाल बराबर, दिन क्यों लगन साल बराबर, अखदा चानन मर जावे थे, नीला पीला लाल बराबर, उतों उतों परदे पावन विचों सब दा हाल बराबर, मुर्शद जे नाराजी होवे मुजरा नाच तमाल बराबर।

कि कितनी अजीब बात है ये, तुझसे आखिरी मुलाकात है ये। दिल ने बावेला मचा रखा है कि मेरी चुप की शुरुआत है ये। हंसता रहूंगा मैं, बसता रहूंगा मैं, पर चाहता हूं क्या अब ना कहूंगा मैं। आंखों को देखने की जरूरत नहीं रहेगी जब दस्तरस में तेरी सूरत नहीं रहेगी। हाथ ये मेरे आराम ही करेंगे, तेरे लिए दुआ का बस काम ये करेंगे।

किसी को खुद से बेजार करने के कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहले तो ये कि आप सबको तो उसको 24 घंटे में आप मुयस्सर रहें, उससे बात कीजिए। जब भी उसका मैसेज आता है तो उसको फौरन फास्ट रिप्लाई कर दें, बिना इंतजार करवाए। और फिर उसको ये एहसास दिलाएं कि आप उसके लिए बहुत खास हैं और मोहब्बत भी करें, और उसको ये भी बताएं कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते। और जब उसको ये एहसास हो जाए कि आप उसके बगैर रह नहीं सकते, तो लीजिए आपको आसमान पर चढ़ाकर जमीन पर पटखने वाला शख्स तैयार है।

बस कुछ मजीद वक्त है आपके हमारे साथ में। थोड़ा सा गैप है और उसके बाद

0: हाँ जी, इसको मोहम्मद यूसुफ कहते हैं, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइए। कोई तो हो जो हमारे लहजे हमारी रूहों का दर्द समझे, कोई तो हो जो हमारे लहजे हमारी रूहों का दर्द समझे, हमारी चुप का सवाल समझे, हमारे दुख को समझ के अपना हमारे दुख का मलाल समझे। किसी को ऐसी अता हो आंखें वो जिनसे देखे हमारी हालत, हमें गले से लगाए अपने बिना भी किसी सवाल के, वो हमारे अंदर का हाल समझे। कोई तो हो जो ये रहम खाए, कोई तो हो जो हमें बताए हयात कम है।
1: चार दिना दी दुनिया सारी,
0: जब आप कोई जगह नहीं छोड़ेंगे तो फिर कहीं पे तो है।
1: हो चार दिना।

Să ajungem de Olivia Mange. तनहाई से छुटकारा पाने को अपनाए था तुम्हें मुकद्दर है तनहाई ना मालूम था हमें करके तनहाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम आ जाना इस तनहाई को कि फिर से दावत हम देते हैं तुम्हें अल्लाह हाफिज़।

पार्टी बिलावल की नजर डाली।

ये जो रंगीन तबस्सुम की अदा है मुझ में, मुझको लगता है कोई मेरे सिवा है मुझ में। खुद भी हैरान हूं अजल से कि ये क्या है मुझ में, कौन शहरक से मेरी बोल रहा है मुझ में। तुम तो कुन कह के निगाहों से छुपे हो, लेकिन हर घड़ी एक नया हश्र बपा है मुझ में। कौन था जो मेरे एहसास को रोशन करता, उम्र भर सिर्फ मेरा दिल ही जला है मुझ में। दिल कभी जुल्मत फरदा से हिरासा न हुआ, एक खुर्शीद नया रोज उगा है मुझ में। ये जो रंगीन तबस्सुम की अदा है मुझ में, मुझको लगता है कोई मेरे सिवा है मुझ में।

तुम मेरे साथ भी जुदा भी हो, तुम मेरे साथ भी जुदा भी हो, तुम मेरा दर्द भी दवा भी हो, तुम सफीना भी ना खुदा भी हो, तुम तला तुम भी आसरा भी हो। ढूंढता हूं कहां कहां तुमको, राहजन तुम हो रहनुमा भी हो, तुम ही हो मेरी गर्मी आगोश, मेरे पहलू का तुम खला भी हो, और दिल के रुकने की हो तुम ही आवाज, दिल की धड़कन की तुम सदा भी हो, पी के सरशार भी हो प्यासा भी, तिश्नगी भी हो तुम नशा भी हो। ढूंढता हूं कहां कहां तुमको, राहजन तुम हो रहनुमा भी हो, तुम मेरे साथ भी जुदा भी हो, तुम मेरा दर्द भी

मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो। मेरी जिंदगी है तू। मेरी

से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा। इतना मानूस ना हो खलवत है गम से अपनी, तो कभी खुद को भी देखेगा तो डर जाएगा। डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं मैं, नहीं कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, जिंदगी तेरी अता है तो ये जाने वाला, तेरी बख्शिश तेरी दहलीज पे धर जाएगा। जब्त लाजिम है मगर दुख है कयामत का फराज, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा, जालिम अब के भी ना रोएगा तो मर जाएगा। आंख से दूर ना हो दिल से उतर जाएगा, वक्त का क्या है गुजरता है गुजर जाएगा।

जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। तू मोहब्बत से कोई चाल तो चल, हार जाने का हौसला है मुझे। दिल धड़कता नहीं टपकता है, कल जो ख्वाहिश थी आवला है मुझे। हम सफर चाहिए हुजूम नहीं, एक मुसाफिर भी काफिला है मुझे। जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे।

नजीर हो रहा होता है, जहां हकीकत में रौनकों में रौनक नजर आती है, जहां रंगों में रंग नजर आता है, जहां इंसान अपने वजूद को महसूस कर सकता है, अपने हाल को महसूस कर सकता है। और अगर मन तक लगाई जाए तो इंसान हाल में हुआ ही नहीं करता, वो तो अपने तखय्युल की दुनिया में न जाने क्या कुछ सजाए बैठा होता है। वो तखय्युल की दुनिया जो उसकी अपनी बनाई हुई होती है, जहां सब कुछ उसकी मर्जी का हुआ करता है, जहां सब रंग उसकी मर्जी के होते हैं। और एक शख्स उसे एक कायनात में, उसकी अपनी कायनात, और सब कुछ उसी एक शख्स से मंसूब, हर जज्बा, हर एहसास, गो के सारी कायनात उस एक शख्स में सिमट आई हो।

जिस समत भी देखो नजर आता है कि तुम हो। ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है, खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये धुंध है, बादल है कि साया है कि तुम हो।

जिस संत भी देखो नजर आता है कि तुम हो। ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो। ये ख्वाब है खुशबू है कि झोंका है कि पल है। ये धुंध है बादल है कि साया है कि तुम हो। इस दीद की साथ में कई रंग है लर्जा। मैं हूं कि कोई और है दुनिया है कि तुम हो। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी। देखो ये किसी और की आंखें हैं कि मेरी। देखो ये किसी और का चेहरा है कि किसी और का चेहरा है कि तुम हो। और ये उम्र गुरेजा कहीं ठहरे तो ये जानू। ये उम्र गुरेजा कहीं ठहरे तो ये जानू। हर सांस में मुझको यही लगता है कि तुम हो। हर बज्म में मौजू सुखन दिल जदगा का। अब कौन है शीरी है कि लैला है कि तुम हो। हर एक दर्द का फैला हुआ सहरा है कि मैं हूं। एक मौज में आया हुआ दरिया है कि तुम हो। वो वक्त ना आए कि दिले जार भी सोचे इस शहर में तन्हा कोई हमसा है कि तुम हो। और आबाद हम आशुफ्ता सरों से नहीं मक्तल। ये रस्म अभी शहर में जिंदा है कि तुम हो। ऐ जाने फराज इतनी भी तौफीक किसे थी। हमको गमे हस्ती भी गवारा है कि तुम हो। जिस समत भी देखूं नजर आता है कि तुम हो। ऐ जाने जहां ये कोई तुम सा है कि तुम हो।

यूं तो किस फूल से रंगत न गई बू न गई, यूं तो किस फूल से रंगत न गई बू न गई। ए मोहब्बत मेरे पहलू से मगर तू न गई, मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ मेरे, मिट चले मेरी उम्मीदों की तरह हर्फ ते, मगर आज तक तेरे खतों से तेरी खुशबू न गई। कब बहारों पे तेरे रंग का साया न पड़ा, कब तेरे गैसुओं को बाद सहर छू न गई। और तेरे गैसुए मोअंबर को कभी छेड़ा था, तेरे गैसुए मोअंबर को कभी छेड़ा था, मेरे हाथों से अभी तक तेरी खुशबू न गई, मेरे हाथों से अभी तक तेरी खुशबू न गई।

0: समान मेरे संत की मोहब्बत मेरा नाम है दीवान मेरे सब को दवा की न दुआ की है जरूरत मेरे सब को दवा की न दुआ की है जरूरत ये खुद दवा बनेगा डराओ तो ले
1: और अच्छा।

कुछ हासिल करने की ख्वाहिश, वो तो कभी खत्म नहीं होती है। हम इंसान कभी लाशऊरी तौर पर भी कुछ मंजिल का तायुन कर लिया करते हैं, और जरूरी नहीं कि वो मंजिल हमारे हक में बेहतर ही हो। हमें तजुर्बा करना अच्छा लगने लग जाता है, चाहे फिर उसमें हार ही क्यों ना हो। धीरे धीरे बहुत से जज्बों से आशना होते चले जाते हैं हम इंसान, और कैसी अजीब बात है कि कोई कितना भी बता दे हमें, ये जज्बे लफ्जों की शक्ल में, जुमलों की शक्ल में जहन में सराइयत करते ही नहीं है जब तक इनको महसूस ना किया जाए। मोहब्बत क्या है ये अल्फाज में बताया नहीं जा सकता, ठीक इसी तरह दर्द क्या है, कर्ब क्या है, इसको बयान नहीं किया जा सकता। कोशिश की तो कहा कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ठीक इसी तरह दर्द की कैफियत भी बयान नहीं की जा सकती है। ये तो बस महसूस होता है, और इससे हज उठाने वाले ही जानते हैं कि इस कैफियत में क्या है, क्या मख्फी है और क्या मकसूद है। अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं, अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं, अभी पहली मुसाफत की थकन से चूर हैं पांव, अभी पहली रफाकत का हर एक घाव सलामत है, अभी मकतूल ख्वाबों को भी दफनाया नहीं हमने, अभी आंखें हैं इद्दत में, अभी आंखें हैं इद्दत में, अभी ये शोक के दिन है, अभी इस गम की कैफियत से बाहर किस तरह आए, अभी इस गम को भरने दो, अभी कुछ दिन गुजरने दो, अभी कुछ दिन गुजरने दो। ये गम के नीलगुण दरिया उतर जाएं तो सोचेंगे अभी ये जख्म ताजा है, ये भर जाएं तो सोचेंगे दोबारा कब उजड़ना है, अभी ये जख्म ताजा है, ये भर जाए तो सोचेंगे दोबारा कब उजड़ना है। अभी पहली मोहब्बत के बहुत से कर्ज बाकी हैं।

जननी दूर बैठी मैं को बिछो लगार मां, मैं था ते ढोला

अपने आंचल में छुपा कर मेरे आंसू ले जा, याद रखने को मुलाकात के जुगनू ले जा। मैं जिसे ढूंढने निकला था उसे पा ना सका, अब जिधर जी तेरा चाहे मुझे खुशबू ले जा। आ जरा देर को और मुझसे मुलाकात के बाद सोचने के लिए रोशन कोई पहलू ले जा। हाथ से ऊंची उड़ानों में बहुत होते हैं, तजुर्बा तुझको नहीं है मेरे बाजू ले जा। जो भी अब हाथ मिलाता है तुझे पूछता है, हाँ मेरे हाथों से ये लम्स की खुशबू ले जा। लोग इस शहर में जाने, लोग इस शहर में क्या जाने हो कैसे कैसे, मेरा लहजा मेरे इखलास का जादू ले जा। कॉलर को शामिल करते हैं जी, दोबारा कोशिश कीजिएगा।

0: अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई बताइएगा, मुझे आवाज़ ठीक आ रही
0: है? जी अभी ठीक आ रही है।
1: चलिए अल्लाह का शुक्रिया। आपने रेशमा जी की सुनाई गजल बहुत ही लुत्फ आया, बड़ी खूबसूरत। आपका इंतखाब बहुत अच्छा होता है, शायरी का भी और गजलियात का भी, बहुत ही अच्छा। बीच में बड़ा अच्छा अच्छा कलाम सुनने को मिला, बहुत अच्छा। अच्छा आतिफ, एक बात मैं पूछ रही थी आपसे, मुझे एक शेर पढ़ते हैं ना अक्सर, ये मैंने सुना है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, वो इसका ये है या मुझे ख्याल पड़ता है कि एक आग का दरिया है और तैर के जाना है, डूबना है या तैरना है, सही लग रहा क्या आता है इसमें?
0: मैंने तो यही सुन रखा है, डूब के जाना है।
1: डूब के जाना है, चलिए मैं भी इसको देखूंगी जरा सा, पता नहीं कि मुझे लगा कल से हुआ तो दो तीन दफा हुआ लेकिन मैं पूछ नहीं सकी थी आपसे। चले बहरहाल, एक बात और पूछनी थी अगर इजाजत दें आप,
0: उससे
1: पहले कि जो आपका 111 वाला नंबर है ना, वो यहाँ से थ्रू नहीं होता, होता ही नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। आप जो नंबर पे कॉल लेते हैं ना, ये बड़े आराम से हो जाता है, पता नहीं क्यों नहीं होता, इसकी वजह क्या हो सकती है, कुछ है आपके लिए?
0: नहीं मुझे इसके बारे में पता नहीं, ये नंबर मुझे मालूम पड़ा था तो मैं अब यही नंबर बताता हूँ।
1: नहीं ये आपका ये बहुत अच्छा है, सही हो जाता है। चले हमें बात ही बस इसी वक्त ही करनी होती है, दिन में तो मैं सुनती नहीं। अच्छा मैं आपको एक सुनाती हूँ, फराज साहब की नजर।
0: जी।
1: मैं मर मिटा तो वो समझा ये इंतहा थी मेरी, मैं मर मिटा तो वो समझा ये इंतहा थी मेरी, उसे खबर ही नहीं थी कि खाक की मियाँ थी मेरी। मैं जब हवा में मैं चुप हुआ तो वो समझा कि बात खत्म हुई, मैं चुप हुआ तो वो समझा कि बात खत्म हुई, और इसके बाद तो आवाज जा बजा थी मेरी। मैं उसको याद करूं भी तो याद आता नहीं, उसको भूल गया हूं।
0: आपकी आवाज फिर खराब होने लग गई है, माजरत के साथ इस गजल को मैं मुकम्मल कर देता हूँ।

0: जो ताना जन था मेरी पोशिश है दर्दीदा पर, उसी के दोष रखी हुई कबा थी मेरी। मैं उसको याद करूं तो भी, मैं उसको याद करूं भी तो याद आता नहीं। मैं उसको भूल गया हूं यही सजा थी मेरी। शुक्रिया आपकी शिरकत का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: क्या हाल है आदिल भाई?
0: मैं अच्छा हूँ जी।
1: बेचाना फिर?
0: नहीं मैंने नहीं बेचाना।
1: हम ना कौन बहुत मुश्किल कॉल लगी है फिर से।
0: ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए का, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता।
1: मैंने कहा मैंने फिर से ट्राई किया, बहुत मुश्किल लगी।
0: चले, आपको खुश आमदीद कहता
1: हूँ। हाल आदिल भाई आपके?
0: मैं बहुत अच्छा हूँ।
1: साल के बाद करें बहुत एंजॉय किया था, आज आप फिर थोड़ा सा।
0: बस वो साल में एक दफा आती है
1: जी,
0: साल में एक दफा आती है। चले आहिस्ता आहिस्ता चले, सुनाइए क्या कहेंगी।
1: बस आपको पैगाम सुन रही थी तो अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो मैं कॉल करती हूँ।
0: ठीक है, कोई शेर, कोई गजल, कोई नज्म सुनाना चाहेंगी?
1: क्या बस सुनती हूँ आपसे, यानी के मजा आता है सुनने का।
0: ठीक है ठीक है, चले
1: बहुत अच्छा पैगाम करो। तो मेरी ना जिसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरा फोन ले लें जब भी कॉल कर रही होती है, इनके साथ यही हो रहा है। ये नया मोबाइल खरीदने फिर रेडियो पर कॉल करे करे। और मैं सलाम कहना चाहूंगी रिमशा को और नीला पीछे गादी साजिदा मारिया, ठीक है? और रिमशा को सलाम, और रिमशा से रिक्वेस्ट है कि तुमने कॉल करनी है, ठीक है?
0: चले, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू आदर भाई, थैंक यू।

आज कह रहा वहाँ की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। ये अजनबी सी मंजिलें और रफ्तगां की याद, तन्हाइयों का जहर है और हम हैं दोस्तों। लाई है बुढ़ा के गए मौसमों की बास, बरखा की रुत का कहर है और हम हैं दोस्तों। फिरते हैं मिसले मोजे हवा शहर शहर में, आवारगी की लहर है और हम हैं दोस्तों। शामे आलम ढली तो चली दर्द की हवा, रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्तों। आंखों में उड़ रही है लुटी महफिलों की धूल, इबरत सराय दहर है और हम हैं दोस्तों। अश्के रवां की नहर है और हम हैं दोस्तों, उस बेवफा का शहर है और हम

ए हमा रंग हमा नूर हमा सोज गुदाज, बज़्म महताब से आने की जरूरत क्या थी। तू जहां थी उसी जन्नत में निखरता था तेरा रूप, तू जहां थी उसी जन्नत में निखरता तेरा रूप, इस जहन्नम को बसाने की जरूरत क्या थी। ये खदो खाल ये ख्वाबों से तराशा हुआ जिस्म, और दिल जिस पे खदो खाल की नरमी भी निसार, खार ही खार शरारे ही शरारे हैं यहां, और थम थम के उठा पाऊं बहारों की बहार। तिश्नगी जहर भी पी जाती है अमृत की तरह, जाने किस जाम पे रुक जाए निगाहें मासूम, डूबते देखा है जिन आंखों में मैं खाना भी, प्यास उन आंखों की बुझे या ना बुझे क्या मालूम। तुझसे एक दर्द का रिश्ता भी है बस प्यार नहीं, तुझसे एक दर्द का रिश्ता भी है बस प्यार नहीं। अपने आंचल पे मुझे इश्क बहा लेने दे, तू जहां जाती है जा, रोकने वाला मैं कौन अपने रास्ते में, मगर शम्मा जला लेने दे अपने रास्ते में, मगर शम्मा जला लेने दे।

0: मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। 1:00 तकरीबन 15 मिनट हुआ चाहते हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं 920-2540 पर। एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: जनाब कौन है, कहाँ से? ठीक है, आप ठीक है जनाब?
1: ठीक हो?
0: मैं अच्छा हूँ जनाब, अच्छा हूँ। क्या कहेंगे?
1: आतिर भैया को बात पूछनी थी।
0: पूछिए जनाब।
1: अच्छा, हम इसको ये जो गुलाम मुस्तफा कादरी है ना, ये नात गाई थी राही लगाने की दुनिया नहीं।
0: अच्छा, पहले तो मैं आपको एक बात दूं।
1: जी
0: नात की ये नात नहीं होती है हुजूर। नात का मतलब होता है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जा रही हो, वो उसको नात कहते हैं।
1: तो इसको हम नसीहत बोल सकते हैं?
0: नहीं, मैं उसको आप जो भी बोल रहे हैं, नात की मैंने आपको तारीफ बता दी।
1: अच्छा, ये नात नहीं है, यही पूछना था। ये
0: नात का मतलब मैंने आपको बता दिया ना, नात किसको कहते हैं।
1: ठीक है,
0: चलें, खुश रहें।

0: इसके अलावा हमारे साथ है मरीना बिलाल, सलाम पेश करती हैं और लाहौर से आपका ताल्लुक है। अरूज चौधरी हैं और लाहौर में सुनती हैं, आवाज़ आपको पसंद आ रही है, बहुत शुक्रिया। फजल महमूद ने सलाम पेश किया। साजिद अली हमारे साथ हैं। अनस सीमा हैं, सलाम पेश करते हैं। अरूज कहती हैं कि योर वॉइस विद बैकग्राउंड म्यूजिक इज़ जस्ट लाइक अ थेरेपी। सलामत रहें, आपका हौसला समाता है, बहुत शुक्रिया। मलिक वसीम आवान हैं और आपका प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा फैसल अब्बास हमारे साथ हैं, जन्नत सलीम हैं, इब्रार अंजुम हैं और फसीहा जन्नत हमारे साथ हैं, हानी अब्बासी सुनते हैं, बहुत शुक्रिया आप तमाम की शिरकत का। कुछ कॉल्स शामिल करता चलूं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि।
0: जनाब
1: आदिर भाई हमीद गुल अर्ज कर रहा हूँ रावलपिंडी।
0: कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब?
1: आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं?
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा हूँ।
1: केक आपने बड़ा लेट काटा होगा उसमें जाकर।
0: हाँ
1: है ना।
0: हाँ जी, केक मेरे यहाँ 3-4 केक कटते हैं। क्योंकि एक रात को कटता है, एक फिर मेरा होता है, एक मेरे भाई का होता है, तो वो बारी बारी केक सारा दिन ही चलते हैं।
1: हाँ हाँ, आपके भाई को भी सालगिरह मुबारक हो।
0: शुक्रिया।
1: आज मैं सुनने को मिला
0: जी।
1: अभी एक शेर पढ़ा गया कि जिगर मुरादाबादी का, एक काब का दरिया है और डूब के जाना। देखे ना कितने खूबसूरत, आपके दरिया में तैरा तो जा ही नहीं सकते ना बंदा, डूब के जाना पड़ेगा आप।
0: जी हाँ ऐसा ही है।
1: क्या खूबसूरत तस्वीर है।
0: जी हाँ बिल्कुल।
1: इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए।
0: जी हाँ,
1: एक आग का दरिया है और जहाँ आग होगी वहां डूब के जाना, तस्वीर बड़े खूबसूरत तस्वीर। बारह मैं आपको एक नज्म सुनाता हूँ जिसका उन्वान है फोन कॉल।
0: जी हाँ सुनाइए।
1: मैंने जब पहले जब लिखी थी, मैंने आज इसको, इसका जो सरनाम है वो थोड़े शुरू के मिसरे थे, मैंने चेंज कर लिए।
0: ठीक है।
1: वो मुझे थोड़ी सी कहीं भी शायरी में कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है, तो मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया कि उसका उन्वान है फोन कॉल। लेकिन मैं तंकीद के तौर पे आपको एक एक एक शेर भी अपना सुना देता हूँ।
0: जी सुनाइए।
1: कि मेरा शेर है, नज़्म मेरी अपनी शेर है कि कोई कितना भी जरूरी कैसे हो सकता है। कोई इतना भी जरूरी कैसे हो सकता है, हाँ मगर तुम चाहो तो ऐसे हो सकता है।
0: अच्छा,
1: उनका अनुमान है फोन कॉल।
0: तो
1: वो जब भी मुझको कॉल करती उल्टे सीधे सवाल करती।
0: अच्छा।
1: वो जब भी मुझको कॉल करती उल्टे सीधे सवाल करती, मैं मुस्कुरा के उससे कहता बहुत दिल चाहता है किसी दिन तुझको अपने पास बुलाऊं, यहाँ पास बिठाऊं चाय पिलाऊं।
0: अच्छा ठीक है।
1: वो जब भी मुझको कॉल करती उल्टे सीधे सवाल करती, मैं मुस्कुरा के उससे कहता बहुत दिल चाहता है किसी दिन तुझको पास बुलाऊं, यहाँ पास बिठाऊं चाय पिलाऊं। आखिर साहब चाय पिलाऊं और इस चाय के कप में हसबे जायका तेरी हाँ मिलाऊं।
0: ठीक है।
1: इस चाय के कप में हसबे जायका तेरी हाँ मिलाऊं, यूं ही तेरी ना में ना मिलाऊं, फिर उस नाम में तेरी हाँ मिलाऊं।
0: क्या बात है।
1: फिर उस नाम में तेरी हाँ मिलाऊं, पर ये तो बता मुझको मैं तेरे दिल पर दस्तक देने कब आऊं।
0: ठीक है।
1: मैं तेरे दिल पर दस्तक देने कब आऊं, फूल पर उसकी एक हल्की सी मुस्कुराहट ने बिना चाय के ही मेरे बदन में नशा सा घोल दिया। ऐसा लगा कि जैसे उसने हाँ बोल दिया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: ऐसा लगा कि जैसे उसने
0: हाँ बोल दिया।
1: अच्छा मैं पिछली दफा ये सोच रहा था तो मैंने कहा ये बड़ी बेईमानी होगी, जहाँ मैंने कहा ना कि चाय पिलाऊं, मैंने शायद लिखना कुछ वक्त मुझे याद थी, मैंने कहा साथ ऐड कर दूं कि केक खिलाऊं।
0: अच्छा अच्छा जनाब।
1: कुछ नहीं, दुआओं में याद रखिएगा।
0: सलामत रहिए आप, याद रहिए, बहुत शुक्रिया।

0: आपको रेगुलर सुनते, हरिद्वार का बहुत बेचैनी से इंतजार रहता है।
1: सलामत रहे, सलामत रहे, दुआओं में याद रखें, बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर, इंशाल्लाह याद रखेंगे। थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।

दर्द जब हद से गुजरता है तो सुरूर दिया करता है, और जो सुरूर को महसूस कर लेते हैं वो एक मुनफरिद राह की जानिब चल पड़ते हैं। लेकिन उससे पहले पहले जब तक वो सुरूर नहीं है तब तक उस दर्द को सहना पड़ता है, और इंसान होने के नाते मुस्तहिक हुआ करते हैं हम इंसान कुछ ना कुछ हमदर्दी के, ख्वाहिश भी हुआ करती है कि वो दर्द कम पड़ जाए, घट जाए, वो अज़ियत खत्म हो जाए, खत्म नहीं तो कम जरूर हो जाए। इंसानों की आदत बहुत बुरी हुआ करती है, तन्हाई की गली में हवाओं का शोर था, आंखों में सो रहा था अंधेरा थका हुआ, सीने में जैसे तीर सा पैवस्त हो गया था, कितना दिल खराश उदासी का कह कहा। यूं भी हुआ कि शहर की सड़कों पे बारहा, हर शख्स से मैं अपना पता पूछता फिरा। बरसों से चल रहा है कोई मेरे साथ साथ, है कौन शख्स उससे मैं एक बार पूछता। दिल में उतर के बुझ गई यादों की चांदनी, आंखों में इंतजार का सूरज पिघल गया। छोड़ी है उनकी चाह तो अब लग रहा है यूं जैसे मैं इतने रोज अंधेरों में कैद था। कमरे में फैलता रहा सिगरेट का धुआं, मैं बंद खिड़कियों की तरफ देखता रहा। हाजर ये किसकी संत बढ़े जा रहे हैं लोग, इस शहर में तो मेरे सिवा कोई भी ना था। हाजर ये किसकी समत बढ़े जा रहे हैं लोग, इस शहर में तो मेरे सिवा कोई भी ना था। तन्हाई की गली में हवाओं का शोर था, आंखों में सो रहा था अंधेरा थका हुआ, सीने में जैसे तीर सा पैवस्त हो गया। दूर मंजिल है राह गुजर, था कितना दिल खराश उदासी का कह कहा।

फायदा क्या है जमाने में, खसारा क्या है, खाक हो जाएंगे हम लोग, हमारा क्या है। जीतने वालों का हमको नहीं कुछ इल्म के हम हार कर सोचते रहते हैं कि हारा क्या है। देखो ऐ उम्रे रवां, ख्वाहिशें रह जाएंगी, तुम गुजर जाओगी चुपके से, तुम्हारा क्या है। वो अगर देख ले एक बार मोहब्बत से तो फिर जर्राए खाक चमक उठे, सितारा क्या है। ये अलग बात, धुआं उठता नहीं है, वरना मुझ में वो आग है, मुझ में वो आग है रोशन के, शरारा क्या है। और नाव किस चिड़िया को कहते हैं हमें क्या मालूम, नाव किस चिड़िया को कहते हैं हमें क्या मालूम, लहर क्या शह है, नदी क्या है, किनारा क्या है। सोचना ये है कि आज़र हमें जाना है कहां, देखना ये है मुकद्दर का इशारा क्या है। देखो ऐ उम्रे रवां, ख्वाहिशें रह जाएंगी, तुम गुजर जाओगी चुपके से, तुम्हारा क्या है।

ये जो जुदाई का लम्हा हुआ करता है, इस लम्हे में किसी को जाता देखना और उस लम्हे को कैद करना, इंसान इसी तगोदो में हुआ करता है कि उस लम्हे को अपनी गिरफ्त में कर ले, उस वक्त में सब कुछ ठहर जाए, उसका वजूद मुंजमद हो जाए, उसकी बसारत एक जगह पर ठहर जाए और किसी तौर वो इस लम्हे को, उस इंसान को, उसके खदोखाल को अपने जहन में कहीं महफूज कर ले। अजीब मासूम ख्वाहिशात हुआ करती हैं हम इंसानों की, उस लम्हे को कैद करना चाहते हैं और ये ख्वाहिश हुआ करती है कि जब चाहें ठीक वहीं से ये लम्हा फिर से जिंदा हो जाए और वो लम्हा जुदाई का लम्हा रहे ना। ये उम्मीदें जो हम इंसानों के साथ साथ हुआ करती हैं, इन्हीं उम्मीदों की बिना पर ये उम्र रवा हम गुजारते रहते हैं। उम्मीद बंधी रहती है तब तक जब तक तस्लीम न कर लिया जाए कि जो बीत चुका है वो बीत चुका है, जो जा चुका है वो जा चुका है, लेकिन जुदाइयों को तस्लीम करना, इससे मुश्किल कोई काम शायद हम इंसानों के लिए है नहीं। उम्मीदें टूट जाती हैं, किसी को अलविदा कहना बहुत तकलीफ देता है। किसी को अलविदा कहना बहुत तकलीफ देता है, उम्मीदें टूट जाती हैं, यकीन पे बेयकीनी का कोहर कुछ ऐसे चढ़ता है, दिखाई कुछ नहीं देता, सुझाई कुछ नहीं देता, दुआ के लफ्ज होंठों पर मुसलसल कपकपाते हैं, किसी ख्वाहिश के अंदेशे जहन में दौड़ जाते हैं, गुमा कुछ ऐसे होता है कि जैसे मिल ना पाएंगे, ये गहरे गहरे जख्म फुरकत के किसी से सिल ना पाएंगे, ये गहरे जख्म फुरकत के किसी से सिल ना पाएंगे। कभी ऐसा भी हो यार अब दुआएं मान लेता है, तू कोई मौजजा कर दे, तू कोई मौजजा कर दे, तू ऐसा कर भी सकता है, मेरे हाथों की जानिब देखे ना, तू भर भी सकता है। जुदाई की ये तीखी धार दिलों का खून करती है, जुदाई की अजियत से मेरा दिल अब भी डरता है, जुदाई की अजियत से मेरा दिल अब भी डरता है। जुदाई दो घड़ी की हो तो कोई दिल को समझाए, जुदाई चार पल की हो तो कोई दिल को बहलाए, जुदाई उम्र भर की हो तो क्या चारा करे कोई, जुदाई उम्र भर की हो तो क्या चारा करे कोई। केक मिलने की हसरत में भला कब तक जिए कोई, केक मिलने की हसरत में भला कब तक जिए कोई। मेरे मौला करम कर दे, तू ऐसा कर भी सकता है, मेरे हाथों की जानिब देख, इन्हें तू भर भी सकता है। जुदाई की ये तीखी धार दिलों का खून करती है, जुदाई की अजियत से मेरा दिल अब भी डरता है,

जो ख्याल थे ना कयास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जो मोहब्बतों की असास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें मानता ही नहीं ये दिल, वही लोग हैं मेरे हमसफर। मुझे हर तरह से जो रास्ते, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। मुझे लम्हा भर की रफाकतों के शराब और सताएंगे। मेरी उम्र भर की जो प्यास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। ये ख्याल सारे हैं आरजी, ये गुलाब सारे हैं कागजी। गुले आरजू की जो बास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। जिन्हें कर सकाना कबूल में, वो शरीक राहे सफर हुए। जो मेरी तलब मेरी आस थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए। मेरी धड़कनों के करीब थे, मेरी चाहते मेरा ख्वाब थे। वो जो रोज़ो शब मेरे पास थे, वही लोग मुझसे बिछड़ गए।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुसाफत शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। हमेशा की तरह जाने से पहले कुछ जुमले शामिल करता चलूंगा जो काबिश हुआ करती है कि आपके तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं। मोहब्बतों की कैफियत और दर्द की कैफियत मौजूए सुखन रहे आज। इन कैफियत में बड़ी शिद्दत हुआ करती है, ये इंसान पर तारी हो जाया करती हैं और इंसान इनके निर्गे में आकर अपने आप को समझ नहीं पाता, अपने आप से दूर चला जाया करता है। इंसान के लिए जरूरी है कि उसकी खुद से मुलाकात हो और ये जज्बे इनके जेरे असर होते हुए इंसान हकीकत आशना हो नहीं पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि फिर इंसान को इन जज्बों से दूर रहना चाहिए। क्या है कि ये खाली जहन इंसान इस दुनिया में जो कुछ सीखता है वो उसका तजुर्बा हुआ करता है, और जब तक इन कैफियत से दो चार ना हो जाए वो सीख नहीं सकता, वो पहुंच नहीं सकता उस मंजिल तक जिस मंजिल तक पहुंचने के लिए उसको इस दुनिया में भेजा गया है। और उसी मंजिल की एक कड़ी हुआ करते हैं ये जज्बे। जो इंसान को आशना करते हैं बहुत सी हकीकतों से। यूं कहूंगा कि खुद से मुलाकात मुमकिन नहीं है जब तक इंसान मोहब्बत से दो चार ना हो जाए, जब तक इंसान दर्द से दो चार ना हो जाए मुमकिन नहीं है कि खुद से मुलाकात कर सके। इंसान भटकता फिरता है इस दुनिया में और इस दुनिया की खाक छानता चला जाता है, खुद को मनवाने की काविश पाताल तहों को खोजते हुए, समंदरों की गहराइयों को नापते हुए, सितारों पर कमंदे डालते हुए। टेक्नोलॉजी की दौड़ में इंसान आगे से आगे बढ़ता चला जाता है खुद को मनवाने की खातिर। और ये खुद को मनवाना क्या हुआ करता है? खुद से मुलाकात। जैसे कि पहले कहा था कि यूं मालूम पड़ता है कि एक अलग दुनिया है साथ साथ जो चल रही है, जहां कोई मंतक हुआ नहीं करती है, और उसी दुनिया में तलाश हुआ करती है अपने आप से मिलने की, अपने आप से बातें करने की। इस दुनिया की तेजगामी में खोया हुआ इंसान इन छोटे छोटे मसलों में फंसा हुआ इंसान कुछ वक्त अपने साथ गुजार नहीं पाता, इन जज्बों को रोता रहता है। लेकिन यकीन कीजिए कि जिस राह पर चलना मकसूद है उस राह तक पहुंचने के लिए इन जज्बों से आशना होना जरूरी हो जाया करता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है। जब वो राह सामने नजर आने लगती है वो लम्हा दर हकीकत वो लम्हा हुआ करता है जो इंसान कैद करना चाहता है, अपनी गिरफ्त में लेना चाहता है, और उसी लम्हे की तलाश उसको यहां तक लाती है। कहते हैं कि लैला कभी लंगर बांटा करती थी और मजनू कतार में इंतजार किया करता था कि उसके हाथ से खैरात लेगा, और जब उसकी बारी आती है तो वो उसका प्याला तोड़ देती है। तो मजनू इस बात पर
नाचने लग जाता है। लोग पूछते हैं कि उसने तेरा प्याला तोड़ दिया और तू नाच रहा है, तो वो कहता है कि उसने मुझे मुनफरिद कर दिया, इस पूरी कतार को उसने खैरात दी लेकिन मेरा प्याला तोड़ दिया, मैं इन सब से मुनफरिद हूं, मुख्तलिफ हूं। सोच के जाविये तक पहुंचने के लिए इंसान को इन कैफियत से गुजरना पड़ता है, और यह जाविया कब बनता है, जब इंसान मोहब्बत के हकीकी मानी समझता है, वह मोहब्बत जो इस कायनात की हर शय में छलकती है, वह मोहब्बत जो सब्ज पत्तों में है और हर दरख्त के पत्तों का रंग दूसरे दरख्त से मुख्तलिफ है, वह मोहब्बत जो फूलों के रंगों में है, वह मोहब्बत जो सितारों के चमकने में है, वह मोहब्बत जो बाद सबा की खुनकी में है, वह मोहब्बत जो धूप की तमाजत में है, वह मोहब्बत जो बादलों को उन इलाकों में ले जाती है जो बंजर बयाबान हुआ करते हैं, और उनकी मर्जी से वो बादल वहां बरसते हैं और उन बंजर जमीनों को शादाब कर दिया करते हैं। तो हमारे दिलों की जमीनों का बंजर होना कोई बड़ी बात नहीं, निगाह रखनी होगी तो उस एक कुन की तरफ रखनी होगी जो बादलों को ले जाती है हवा के जरिए उन बंजर जमीनों की जानिब और उनको आबाद और शादाब कर दिया करती है। जब हम उस तरफ निगाह उठाते हैं, और जब तक उस तरफ निगाह नहीं उठाते मुज़तरिब रहते हैं, और ये इज़्तिराब ही जवाब है। अगर ये इज़्तिराब बरपा है ज़ात के अंदर, तो यकीन जानिए कि ये पुकार है कुदरत की जो आपको अपनी तरफ बुला रहे हैं, जो आपको खुद से मुलाकात करने का एक मौका दे रहे हैं। वो जो कहते हैं कि हम जिसे चाहते हैं ज़ुलमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाते हैं, तो फिर मुझे मालूम पड़ता है कि नूर की जानिब जाना ही है। वो कह रहे हैं वो लेकर जाएंगे। तो आज मैं अगर ज़ुलमात में हूं तो अपनी अर्जी उनके सामने रखता हूं। उन्होंने कह रखा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। मेरी जिंदगी में बहुत मुश्किलें हैं, उन्होंने कह रखा है कि इनके साथ ही कहीं आसानियां हैं। मैं बर्दाश्त करता चला जाता हूं, मैं सहता चला जाता हूं, मेरे लबों पर शिकवा नहीं आता। तो उन्होंने कह रखा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। मेरी जात में ना उम्मीदी डेरे डालने लगती है, तो वो कहते हैं कि मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। गर्ज के मेरी जिंदगी में जो कुछ रूनुमा होता है वो हर शय से वाकिफ है। जब समझने लगता हूं उस दोराहे पर खड़े हुए जहां से एक रास्ता बर्बादी की जानिब जाता है और एक रास्ता मंजिल की जानिब, तो मालूम पड़ता है कि वो पुकार रहे हैं, वो बुला रहे हैं। वो कहते हैं मेरी तरफ चल कर आओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। और मैं धीरे धीरे कदम उठाता हूं उस राह को पहचानने की काविश, जिस राह पर वो चलते हैं, जिनको वो इनाम वाले लोग कहते हैं। तो धीरे धीरे सब समझ आने लग जाता है कि हाँ, ये दर्द की कैफियत, ये मोहब्बत की कैफियत, ये जुदाइयां, ये सब कुछ इस दुनिया का हिस्सा है। उस हकीकत को समझने के लिए जो हमेशगी की हकीकत है, इस बात को समझने के लिए कि ये दो घड़ी का सफर एक इम्तिहान है, उस हकीकत की जानिब बढ़ता हुआ जो मुझे खुद से मुलाकात करवाती है। और जब मैं खुद से मिलता हूं तो मालूम पड़ता है कि कोई
کوئی وجود ہے جو میری شاہرگ سے بھی قریب ہے، جو میرے ہر حال سے واقف ہے، اور پھر جو رابطے قائم ہوتے ہیں دل کی دھڑکنوں سے سمیع و بصیر تک کے رابطے، وہ میرے وجود میں سکون بھرتے چلے جاتے ہیں، پھر نفع نہیں رہتا، رحمت بن جاتا ہے، پھر نقصان نہیں رہتا، مصلحت بن جاتا ہے، پھر مناجات ہوا کرتی ہیں، پھر باتیں ہوا کرتی ہیں، پھر تنہائی کاٹنے کو دوڑتی نہیں ہے، پھر اپنا آپ اکیلا لگتا نہیں ہے، پھر سب راہیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں، اور میں بھٹکا مسافر اس راہ کی تلاش میں، کسی انعام والے کو ڈھونڈتا ہوا اس کے قدموں کے نشانوں پر اپنے قدم رکھتا ہوا، اس منزل کی جانب بڑھنے کی کاوش میں لگا رہتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن تو ایسا آئے گا جب میں ظلمات سے نکل کر نور کی جانب بڑھ جاؤں گا۔ اضطراب ہے تو اس کو قبول کرنا ہے، اور قبول کیسے کرنا ہے کہ اپنی تکلیف سے راحت چاہیے ہو تو کسی اور کے پاؤں میں چبا ہوا کانٹا نکالنا ہے، زندگی میں جو چاہیے وہ بانٹنا ہے، اور یقین کیجئے کہ جو چاہیے ہو وہ بانٹنے سے پلٹ کر آتا ہے، اس کو کہیں اور تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ خوشیاں چاہیے تو خوشیاں بانٹنی ہوں گی، آسانیاں چاہیے تو آسانیاں تقسیم کرنی ہوں گی، کچھ اچھا لگا ہو تو دستے دعا جب بلند ہونا چیز کو یاد رکھیے گا، اور کوئی بات سما خراشی کا باعث بنی ہو تو دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہوں گا۔ آپ سے انشاءاللہ اب ملاقات 10 محرم الحرام کے بعد کے پروگرام میں ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان عاطر علی سید کو اب اجازت دیجیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया किसे खोया हमने।

दस्तखत होने की जो बाबा तकरीब है वो जुमा 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगी। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने एक्स पैगाम में खास तौर पर उन तमाम मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने

0: वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा कि हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि दोनों फरीकों ने लबनान समेत।
1: दिस इज एफएम 101.1

सब गोट के अब खत्म।

और जब हम इंसान पर कर्म करते हैं तो मुंह मोड़ लेता और पहलू फेर कर चल देता है, और जब उसको तकलीफ पहुंचती है तो लंबी लंबी दुआएं करने लगता है।

0: ताकि तुम उनकी पीठ पर चढ़ बैठो और जब उस पर बैठ जाओ फिर अपने परवरदिगार के एहसान को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने उसको हमारे जेरे फरमान कर दिया और हम में ताकत न थी कि उसको बस में कर लेते।
1: وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
0: और हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट कर जाने वाले हैं।
1: وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ
0: और उन्होंने उसके बंदों में से उसके लिए औलाद मुकर्रर की बेशक इंसान सरीह नाशुक्रा है।
1: أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ
0: क्या उसने अपनी मखलूकात में से खुद तो बेटियां ली और तुमको चुनकर बेटे दिए।
1: वह इधर